0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, छोटी छोटी कहावतों से। कहा जाता है कि हम जब किसी के पदचिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथी हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योग विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी,
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना।
0: जी,
1: आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाईज है।
0: जी जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें,
0: जिस
1: चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी,
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी,
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: जी जी, सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए, अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं
0: हैं।
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज है
0: जी।
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है
0: जी।
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां

0: या खनिज की लगी हुई है।
1: हम्म,
0: इसके अतिरिक्त आता है आपका जो कि बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है, उसके
1: जी
0: लिए सतर्क रहना है,
1: जी
0: तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
1: जी
0: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुवन वुवन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ, क्लाइस ब्रिक्स हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्थर, इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर स्लॉप वगैरह या फिर क्लाइस ब्रिक्स की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
1: और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन
0: जी
1: वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है। तो
0: जी जी
1: क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।

0: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है,
0: ट्रेड
1: जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है
0: जी,
1: 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
0: जी।
1: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
0: सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
0: जी।
1: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
0: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी, वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है
0: जी।
1: सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी
0: जी।
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
0: जी,
1: युवा उद्यमी योजना
0: जी,
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है
0: जी।
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
0: जी जी जी।
1: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है
0: जी जी,
1: व्यवसाय शामिल नहीं है
0: जी।
1: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती
0: है। अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: सृजन कार्यक्रम
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमिता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होने चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती हैं। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो

आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम कर सकें। तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाए जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
1: जी।
0: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पड़ले पर अगर रचनात्मकता और विचार खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पड़ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पड़नों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि

0: स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा। बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए, तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें करियर बना सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाए, कैसे बनाए, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है, जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं।

0: इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है, और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही है और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब है। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा, दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो,

0: साइंस का हो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक है हाईली प्रोफेशनल है, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे,
1: बिल्कुल
0: और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं।
1: जी,
0: तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री, उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में
1: जी
0: आवाज के आरोह अवरोह को,
1: बिल्कुल
0: वॉइस
1: सर,
0: मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को,
1: जी सर,
0: वर्ड्स को, क्योंकि कानों का माध्यम है,
1: बिल्कुल
0: तो इसमें आप रिपीट नहीं कर, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको
1: बिल्कुल सर,
0: दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है, जो
1: बिल्कुल सर,
0: प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है,
1: जी सर,
0: तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है,
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो
1: बिल्कुल
0: अपने
1: सर,
0: ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए,
1: जी
0: अपने दफ्तर में, इवन
1: जी
0: गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई
1: बिल्कुल सर,
0: रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो
1: बिल्कुल
0: प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और
1: जी
0: रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित
1: जी सर,
0: करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके
1: जी
0: लिए
1: सर,
0: आभारी हूँ,
1: जी
0: और उन
1: सर,
0: सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस, चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी 2 प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं, उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है, तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से, कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये सर।
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो
1: जी
0: उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला
1: जी
0: चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है,
1: जी
0: और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग

0: में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू
1: प्रतिभा
0: रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है,
1: जी
0: तो
1: सर,
0: उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके
1: बिल्कुल सर,
0: और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है। तो
1: बिल्कुल
0: हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है।
1: जी
0: अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: सर,
0: सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे, तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते
1: बिल्कुल
0: का,
1: सर,
0: 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त समझे, 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम
1: जी सर,
0: उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया,
0: रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते
1: बिल्कुल
0: हैं, और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है, तो
1: बिल्कुल
0: हम
1: सर,
0: लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुअन को हम जय का ऊंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नू रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें,
1: बिल्कुल
0: जय
1: सर,
0: बाप के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना करियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनो ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कुके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बियो ने देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी

कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर रहे।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे, राज डॉक्टर, आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहनें थे, 3 बहनें थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो? तो
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब के थे। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए 10 रुपए दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रह, जब तो खेलता ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते थे। और चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: सावन को चपेटा खेल।
0: अच्छा,
1: जो खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हूँ? खेलत में गीत, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आता? पहले तो गाती हूँ आप।
1: अब यार भूल गए, अब तो बुढ़ापो है, ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती है?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते हो
0: जाते,
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
0: है। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते, और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक्सेट है ये पहन लेते, और हम तुमने फिर आके दे रही तो भी पहन लेंगे, बस यही पहरा होता।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई?
1: हमारी और हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती,
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखो तो?
1: हाँ,
0: पहले से देखो तो?
1: हाँ, नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: एक से तो आते ही हमारे बाप बताई 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी। जिन दिन को काम करते हमारी मताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही मताई ने उठे कई मतलब
0: 500 रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे वैसे ही के बिटिया को फोन दिया और फोन में दे दो पैसा। अच्छा, बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: सही ऐसे हुआ ब्याह हो गया।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं

0: बिया के टीका के देना
1: अच्छा।
0: और फिर भावर मावर पर टीके के वो देना छोड़ी जाती बरा दूसरे दिन आ
1: जाती दूसरे
0: दिन आ जाती। तो जब जय माला डरी तो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार के उसे अपन खोलियन पे हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा
1: अच्छा।
0: और जब तुम जो होट बल्लाल बापू बलाइस
1: अच्छा
0: जो लड़का मड़वा गाला ना चावल मार दे।
1: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ बता होगा
0: नहीं बता हमें नहीं बता।
1: अच्छा चावल को कुछ पता ही नहीं है तो
0: मड़वा के नीचे और खड़ा कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मरा चढ़ो फिर
1: भावरे कहाँ चढ़ा तो आपको
0: हमें पेजना चढ़ी थी 1 किलो के वो खम वज्जा
1: 1 किलो की पेजना
0: हाँ वो 1 किलो की पेजना हाँ। खम वज्जा
1: बस
0: दो और जाइए पे रखते पे नहीं
1: थे बाजू बंद
0: हाँ हाँ दे चढ़े थे
1: अच्छा
0: हाँ तब
1: तो अब रखे हो आप
0: हाँ वो अब भारी बेन की बात
1: छे अच्छा दे
0: छे लड़का होगा छे लड़का के ब्याह कर ले
1: अच्छा
0: कहाँ से आ रहे
1: सही बात है। अच्छा आपकी विदा कह रहे भाई दी
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
1: हाँ।
0: वही में वही थी बेटा
1: उतर से इतनी तक
0: जहाँ नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में आए थे। अच्छा इसी पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
0: हम ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन बेदा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी।
1: अच्छा बैलगाड़ी से कैसा लगा तो आपको बेदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी से हुई
0: बैलगाड़ी से होती पहले बेदा सवाई की होती हमारी का पहले देखते वाहन कहाँ थे और चातक नंगा जाते खेलार तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं निंग रहा आदमी
1: अब तो अगर उधर भी जाना
0: अगर तुम्हें काश देव में जाना तो गाड़ी
1: से जाना सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके में नंबर की है
0: थी दूसरे नंबर के नानी दादो
1: नंदन की शादी हुई हाँ। अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हाथी
1: बड़ी हाथी। अच्छा तो फिर आपके एक एक का रस में भाई मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: और आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी ने बना दी थी
1: अच्छा।
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो आप
0: द्वारे में डरवा दे
1: अच्छा
0: और
1: जैसे
0: जब आपने
1: खिचड़ी बनाई
0: और
1: सबने खाई तो फिर
0: कहाँ का नेक
1: मिलो तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे
1: चूल्हे
0: में
1: वो देने हैं
0: हाँ। ये
1: उल्टा नहीं हो रहा
0: पहले देता ही थे
1: अच्छा।
0: अभी भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सा बहु से सास लेते हुए पैसा
1: अच्छा
0: चाहे दस दरे चाहे 11 हो चाहे 100 रख दे लेकिन बस सास ले और अंडा तो और पे रखत बहु
1: अच्छा।
0: तो बेबी सास ले
1: अच्छा ये कौन
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: ना हो कुना को तो ले तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जुड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलत
0: नहीं हमारे समय में नहीं
1: खुलत जुड़ा नहीं खुलते
0: नहीं।
1: अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खुलत थे जो
1: छोड़ा खुलत
0: जो छोड़ा
1: हाँ तो ये भी पैसा
0: सास को सकती है
1: खोल सा खाती के
0: खोल सा खाती सास
1: तो काम हाथ हो तो मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: कछु महत्व
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: ना, छोटे आते से कछु दे
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का होती कहूँ लड़ाई
1: नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं भाई जेठानी ना सास से भाई कहो
1: ना काय नहीं होती आप सीधी हती के दो जने
0: भी दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर सियाने होगा से सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होती है खेती
0: होते खेती होती रात से खेती होती
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते
1: अच्छा। और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से
1: कितने बजे उठाती
0: है 4 बजे उठ जाते 4 बजे से पी सकते 5-6 किलो नाच पीस लेते
1: 5 किलो रोज पीसने
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो 4 बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: ना कम संगे।

0: हूँ अलग अलग पीस।
1: अच्छा, फिर उनके बाद चक्की पीस भी बाद काका काम
0: होता है। फिर गोबर मोबर डाल रखते।
1: कितनी गाय भैंसे होती हैं
0: आपके? गला 10-12 गैया होती। अच्छा। गोबर मोबर डाल रखते, झाड़ा झूड़ी कर रखते। फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
0: फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, चलाते दिन भर।
1: अच्छा, वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं, बैलन सब
1: बैलन से चलते।
0: घर में नहीं आती
1: लोग,
0: सब वही चलाते रहते। कब हम सास जठानी चलाती, कब हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपने कहूँगी। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हमारा 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है।
1: लड़की नहीं है एको। तो आपने लड़का तो पढ़ाओ जो
0: हुए? हाँ, पढ़ा मैं, परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ, सबकी हो गई। सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा, नातीन की भी हो? कितनी नाती है ये?
0: 6 नाती है, 6 नातने हैं।
1: अच्छा,
0: तो बिला आती
1: को मतलब
0: बिला
1: बड़ा परिवार है?
0: हाँ, तो 6 लड़का है, तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और 1 के 4 है बड़े के, 3 मोड़ी है। तो एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए,
1: तीन
0: मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, 1 के छोटी, 1 के मोड़ा होगा, 1 के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको। अच्छा लगा थी तीती भान पे हुआ सब जने आ रहा थे तो और अच्छा लगा थी है ना। तो आप सुमाटा नहीं खेलती हो?
0: नहीं।
1: क्या
0: सब खेल लगती है? सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेल
1: भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी मतलब?
0: पहले उन्हें इन्हें 4 जन्म के कागज दे थे भर के, तो सब ने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा।
0: तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत है। इन्हें 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे
0: फिर हम इनके ससुर बोले लाला हम दे दे वो करे तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के गाने बजा का कर। इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके। तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो, हमने बनक नहीं अब।
1: अच्छा।
0: जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भरे इनको, मतलब खावे पीवे की परेशानी से, जैसा नहीं आते जो दे तो सकते खाओ, नहीं करते तो को दे रहो।
1: सही बात है,
0: दे रहो तो को ना करो।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 में
1: आते।
0: 350 है हमारे, फिर 1500
1: भाई। तो फिर धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली पैसे जाकर।
1: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
0: चौपे ने तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए?
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़ने की का सोच रहे बताओ?
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है, ड्रेस मिल रही
0: है। नाम मिल रहा है, पहले कहाँ मिला?
1: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाई चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी ना, तो नाती पढ़े
1: पढ़ाना चाहिए।
0: हाँ, सब पढ़ा रहे, को पढ़ रहा हो, को बड़ी बड़ी हो गई सब, 7-7, 8-8 में करके छोड़ता ब्याह पढ़ दे ना तो नन की।
1: बहुत बढ़िया, आप
0: दोनों को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहे।
1: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

হয়ে বাবা রাগ রাম্পা, ও সলোখে দেখালে আর

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो के इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, क्या कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, उते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कैवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, क्या आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है? प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे

0: खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खास तौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा। इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग इम्पोर्ट रिलायंस।
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
1: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम

0: फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है हमें, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है क्या, वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं, उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं, जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं। बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उस पर हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं, जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है। जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी, उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकिल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN के SDG गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उससे भी अलाइंड हैं। 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल्स से अलाइंड हैं, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है, उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी

0: हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें आरएनडी करना है बहुत हद तक, लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियली बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो उसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल। हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी।
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होगा कि ये किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है, अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं, हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी आईआईटी कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है, ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर आईआईटी कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है, उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध

0: हुए हैं, और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पे रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी। तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी, और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर ले, पहला MVP बना ले, तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले। तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है, फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में। अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स, जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है, उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा USP यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इस सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर

हमारा 9219207749 इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवार जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किं कर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जापान सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुने थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट

0: अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालो खेती नष्ट है, नष्ट होने तो जो पैसा दे तो ना हमारा लाभ है, बाकी खेतियों को लेते लाभ तो पाने आम जनता पाल
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धीय तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 कॉल करक।
4: फसल

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ। और

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना
0: कल तक।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं बिरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों अब समय हो गया है अपने अगले कार्यक्रम को, कार्यक्रम हेलो फरमाइश को। सो हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपने संग कछु साथी जुड़ रहे हैं। सो आओ जानते हैं जी कहाँ से बोल रहे हैं, का के विचार है। हेलो
1: हेलो बुंदेलखंड
0: जी, नमस्कार, कहाँ से? नमस्कार नमस्कार नमस्कार,
1: काफी दिनों के पश्चात आपसे वार्तालाप हो रही है बुंदेलखंड ओरछा रेडियो एफएम पर
0: जी।
1: और आप अभी तक कहाँ थे भैया जी?
0: अब और अन्य कामन में व्यस्त थे।
1: स्वागत है, अभिनंदन है। आप कम से कम व्यस्त रहते हैं, कार्यक्रम तैयार करते रहते हैं और हम श्रोताओं के लिए प्रसारित करते हैं। अच्छा लगता है सुनना, आपको सुनना, वर्षा दीदी को सुनना और मनीष भैया तो आते ही आते हैं, बातचीत होती रहती है हमारी।
0: जी बिल्कुल
1: भैया जी, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वास्थ्य आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए। मैं आपका जो चैनल होता है मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। भैया जी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार भैया शारदा जी, आप बहुत अच्छे श्रोता है हमारे के, हर बार फोन आप लगा ले हमें बहुत अच्छा लगा
1: जी। बुंदेलखंड ओरछा का और आप लोगों का आकर्षण ऐसा है कि हम बरबर से समय होते ही फोन लगाने के लिए विवश हो जाते हैं
0: जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन शारदा भैया जी?
1: आज भैया जी संत तुलसीदास जी की जयंती है
0: जी। जी बिल्कुल,
1: और उनको शत शत नमन वंदन प्रणाम करता हूँ संत तुलसीदास जी को
0: जी।
1: और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चंगोर, उसी कहे यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। और हमेशा मीठी मीठी वाणी से बातचीत करना चाहिए, इसमें एक सम्मोहन होता है मीठी वाणी में और हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। और संत तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां जाइए कंचन वर्षे में। वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर केवल दिखावा हो से और मन प्रफुल्लित गदगद नहीं हो मिलने से, उनके पास नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कही आपने और तुलसीदास जी ने भेजा बात लिखी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बात कही तुलसीदास जी की लिखी भाई और उन्होंने जो अपने शब्द लिखे हैं और आपने जो कही खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक संगे संगे अपने फरमाइश और बता दें।
1: आइए तुलसीदास जी के दोहा वाली सुना दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी,

0: बाद में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो हेलो।
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ भैया नमस्ते। बढ़िया
0: कैसे हैं
1: है। योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी? योगेश जी,
1: जी भैया।
0: सब बढ़िया है?
1: हाँ सब बढ़िया है भैया।
0: अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने फोन लगा ला, बहुत खुशी हुई है। और काहू अपनो?
1: आज तो वो एक श्रोता सम्मेलन का आयोजन है भैया भिलाई में, तो वहीं जा रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ, क्या बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अपन गीत कौन सा सुने आज?
1: अभी लाइव में है कि ऑफलाइन में
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल, लाइन में है अपन, लाइन में है। हाँ,
1: वही तो। कोई प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग बजवा देंगे, कोई
0: हाँ
1: प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग बजवा
0: हाँ
1: देंगे।
0: बजे। हाँ,
1: हेलो। बर्थडे सॉन्ग है, जन्मदिन वाला सॉन्ग बजा देंगे बोल रहा हूँ भैया।
0: बर्थडे
1: हेलो।
0: सॉन्ग
1: हाँ जी हाँ जी। जी
0: बिल्कुल बजाए अपन। चलो, और सब बढ़िया है?
1: हाँ बाकी सब ठीक है भैया।
0: हाँ, चलो ठीक है। हाँ, तो अपन हैप्पी बर्थडे को गीत सुने हैं।
1: जी।
0: चलो बढ़िया है। नमस्कार भैया।
1: नमस्ते। नहीं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी भैया, कहाँ से? अच्छा
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश एमपी से। बस
0: जी, मोहम्मद जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हो?
0: बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है। आप सब जन की कृपा है।
1: जी, मौसम कैसा है आपके इधर?
0: मौसम बादल छाए हुए हैं।
1: जी, बस जहाँ भी हल है बादल छाए, 3-4 रोज से बारिश नहीं भाई। और बाकी बाकी फसल कैसी है?
0: फसलें ठीक ठाक हैं। फसलें तो फसलन
1: अच्छा, कब हो है?
0: में मूंगफली है, धान लगी और उड़दा तिली होत हमारे यहाँ।
1: अच्छा, हमारे तो मक्का और सोयाबीन और कहूँ कहूँ तो मूंगफली भी बहुत है। हाँ
0: अच्छा
1: जी।
0: चलो बढ़िया है।
1: और कक्का काम का सब ठीक ठाक है?
0: बिल्कुल बढ़िया है, सब ठीक ठाक है।
1: जी।
0: आज अपन कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अरे कुमार सानू को कहूँगा सुनवा दो गाना, अच्छा सा दिल खुश हो जाए।
0: है?
1: कुमार सानू गाना सुनवा दो कोई सो भी अंदाज
0: आप ही बता दो। है?
1: को मैं सुना दो, सुना दो यू अंदाज।
0: अंदाज का?
1: हाँ, अनिल कपूर वाली अंदाज है ना,
0: हाँ।
1: वो गाना सुनवा दियो कोई सो भी। गाने
0: गीत के बोल बताए काट के। है?
1: के बोल तो नहीं आ रहे मनो का, नहीं जो अंदाज सुना दियो आएगो मैं जो बरसात को,
0: है?
1: अंदाज से सुना दियो आएगा मजा बरसात का।
0: आएगा मजा बरसात का।
1: जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और का हो रहा? हाँ
1: बस कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं ट्राई कर रहे थे फोन,
0: ऐसा।
1: और फोन लगा रहे थे जगह जगह। और क्या?
0: चलो बढ़िया है।
1: हाँ जी,
0: तो आप लोग का जो फोन लगा लेती, इससे हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है। चलो हमारे श्रोता

0: हेलो जी भैया, कहाँ से? राम
1: राम राम भैया,
0: राम, राम राम जी, राम राम।
1: मैं राजू यादव, ग्राम उपरे का श्री रामपुर डेरा सरीला राठ मसरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी, कैसे हैं राजू भैया?
1: भैया पानी बरस रहा हो, सब बैठे हैं और बारिश का
0: हाँ,
1: आनंद ले रहे हैं।
0: क्या बात कर, चलो बढ़िया है। और कौन सा गीत सुने अपन?
1: गाना तो सुना दो, लगी सावन की आज वो झड़ी है
0: अच्छा, लगी सावन की आज वो झड़ी है।
1: जी।
0: हाँ
1: और हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं,
0: हाँ
1: एक चंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, रामचरण विश्वकर्मा जी हैं,
0: हाँ
1: राजेंद्र गंगवाल जी हैं, जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: हाँ क्या बात है, चलो बढ़िया है। और सब मजे में
1: और भाई साहब सब बढ़िया है,
0: है? हाँ
1: भली जब वो खा जाए तो ले जाए।
0: क्या बात कही, चलो अच्छी बात है।
1: राम राम भैया।
0: राम राम, राम राम। चलो अपन की सुनाता है।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी। महाराष्ट्र
0: नमस्कार भैया, कहाँ से?
1: हिंगोली जिला करमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर।
0: जी मोहन भैया, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है। क्या हुआ? बहुत बार मेल जा रही मगर
0: क्या होगा मोहन जी?
1: बहुत बार बोला, 2-3 बार होगा मेल जा रही, फोन इसने उठा रहे। बोला क्या? मैं बोला क्या
0: हाँ,
1: कार्यक्रम में क्या ये होता है क्या? कुछ
0: नहीं, फरमाइश दूसरे लोगों की चल रही थी मोहन जी।
1: कोई बात नहीं सर।
0: चलो, अब आपकी कॉल उठ गई, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज मराठी सुना दे क्या? हिंदी? महाराष्ट्र
0: जो भी आप सुनना चाहें।
1: में अभी कल एक नाग पंचमी थी। अब तुम्हारा कार्यक्रम, मैं बोला एक मराठी गीत है, हळद रुसली कुंकू हसलं।

0: शब्द रोशनी कुंकू हासिलो।
1: अच्छा,
0: और उसमें गीत है ए नाग राजा तुझी आज आली नाग पंचमी।
1: हे नाग राजा
0: तुझी आली आज नाग पंचमी, वारुळ आला जाऊया नागोबाला पुंजूया। अगर नहीं मिलता हूँ तो सुन हिंदी सुना दो।
1: हे नाग राजा
0: तुझी आली आज हाँ, नाग पंचमी।
1: बिल्कुल बिल्कुल आप मिल गया, ठीक है।
0: हाँ,
1: अच्छा तो नाग पंचमी के दिन ये पूजा होती है आपके?
0: बहुत बहुत बढ़िया से कल पूजा होती है, बहुत धूमधाम से पूजा होती है। हमारे गांव वाले सब औरता मिलके जाते हैं, वो वारू रहता है वहाँ पूजा करते हैं, दूध लेके जाते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, सब गांव वाले औरता आप खेड़े पाड़े की जितनी ग्रामीण भाग की औरता जाते हैं।
1: हाँ,
0: और नाग पंचमी की झूला झूलते हैं।
1: हाँ,
0: तो बहुत ऐसे कार्यक्रम कर रखते हैं अलग अलग।
1: सही कह रहे, अलग अलग तरीके के।
0: हाँ जी हाँ,
1: सही है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने देखो कितनी बढ़िया फरमाइश करी, इसको अपन फरमाइश में समझ आ गए।
0: थैंक यू, धन्यवाद सर।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो।
1: आमा दिन भैया
0: हाँ राजेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है। बारिश हो रही सभी
0: चलो बहुत अच्छी बात है, बारिश हो रही। और कहो रो अपनों।
1: से बढ़िया दुकाने ही बैठ रहे। हाँ
0: अच्छा चलो
1: आज
0: बढ़िया है। तो आज कौन सा गीत सुने हो?
1: सुनवा रही हो? बारिश सुनवा दो। टिप टिप बरसा पानी मारा फिल्म
0: अच्छा
1: को। हाँ मौसम बढ़िया है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: आप
0: मौसम
1: आज कह रहे
0: बढ़िया।
1: हैं भाई माता भाई बहुत धीमी आ रही शोधन की और आपकी
0: अच्छा आवाज धीमी आ रही।
1: बहुत धीमी आ रही।
0: चलो ठीक है, बढ़ाते हैं अपन। ठीक
1: बढ़ाओ भाई साहब। हाँ अपने दो केंद्र हैं जिन आकाशवाणी रेडियो बुंदेली रेडियो है वहाँ तो ऑफलाइन चल रहा है। एक
0: अच्छा
1: मात्र रेडियो बुंदेलखंड है वो एक ही धीमी आवाज आती है शोधन की।
0: चलो ठीक है, देखते हैं अब कैसी आती है।
1: हाँ वही
0: आज कैसी आई?
1: तो
0: आ रही? बस
1: बढ़िया
0: तो ऐसी ही आ है। अब
1: रही हो। हाँ
0: ठीक है, गीत की ओर
1: ठीक
0: चलें
1: है
0: अपन।
1: भैया। हाँ सुनाओ जयराम जी।
0: नमस्कार जयराम।

0: हेलो, जय सिया राम जय सिया राम। कैसे हैं? हाँ, अच्छा, बारिश वगैरह हो रही?
1: वगैरह
0: हाँ
1: तो हो रही। हाँ, और बढ़िया है, अच्छी हरियाली है अपने फसलों को। आनंद
0: हाँ
1: है तो अपना आनंद है, मतलब किसानों के लिए तो बढ़िया ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ,
0: और बताओ। हाँ,
1: और सब बढ़िया है।
0: आज गीत कौन सा सुने अपन?
1: आज तो जैसे सावन का महीना चल रहा है तो निगाहें फिल्म का एक गीत है, सावन
0: कैसा?
1: के सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: सावन के झूलों ने?
1: हाँ,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और झूलों की भी कतारें लगने
0: हाँ
1: लगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, तो भाई मौसम के हिसाब से गीत भी अच्छा लगता है,
0: बिल्कुल
1: नहीं?
0: सही बात करे, सही बात करे।
1: हाँ,
0: जैसो मौसम तैसो गीत सुने तो अच्छा लगत है।
1: अच्छा लगता है। जैसे तो मौसम की, जैसे अगर शादी का समय हो और रक्षा राखी के बंधन को निभाना गीत बजाए तो अच्छा नहीं है क्या?
0: सही बात है, सही बात है,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: तो सही समय के हिसाब से गीत सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब ही
1: हाँ,
0: आनंद आता है,
1: तो ही आनंद आता है कि नहीं?
0: है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं महेश।
1: हाँ, तो आप बढ़िया हो सब?
0: बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है, आप सब जन की कृपा है।
1: भाई सब हम ऊपर वाले की कृपा है ना, आपकी है ना हमारी है, ठीक
0: सही बात है।
1: है?
0: चलो ठीक है महेश जी, आपने फोन लगा लो, बहुत अच्छा लगा हमें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, चलो गीत सुना।

0: हेलो,
1: खम्मागणी हुकम। हाँ,
0: खम्मागढ़ी हुकुम, कैसे हैं
1: मोहनलाल प्रजापत, जिला बालोतरा, राजस्थान से। हाँ,
0: जी? मोहनलाल जी, कैसे हैं अपन?
1: बहुत बढ़िया हूँ सर। बस
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। कहाँ हो रहा अपनो?
1: अपन किराने की रेडी लगाते हैं, प्रोग्राम सुनते
0: अरे, किराने की रेडी लगाते हैं और प्रोग्राम भी सुनते हैं आप? चलो,
1: हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
1: जी
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हाँ, पत्थर के सनम टाइटल।
0: टाइटल सॉन्ग?
1: हाँ, पत्थर के सनम तुझे हमने
0: हाँ,
1: वो सुना दीजिए सर। बस
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कहा हो रहा अपनो?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: हाँ,
1: और बरसात है नहीं आपके वहां बहुत है, और हमारे इधर बिल्कुल भी नहीं है।
0: अच्छा, आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है?
1: हाँ, बिल्कुल नहीं है। बूंदाबांदी कभी होती है कभी नहीं होती, अभी मौसम साफ है।
0: ओहो, यहाँ तो बादल छाए हुए हैं और बरसात भी आ जाती है, चली जाती है, फिर आ जाती है, बादल छाए हैं कंटिन्यू।
1: नहीं, हमारे यहाँ श्रावण मास में तो बहुत है, वो जड़ी लग जाती है, लेकिन अब की बार नहीं लगी है।
0: अब की बार नहीं लगी?
1: अब की बार बिल्कुल नहीं लगी, शंकर भगवान यूं ही रह गए।
0: अरे, तब तो शंकर भगवान गड़बड़ कर रहे हैं।
1: हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं अभी तो।
0: हैं?
1: बिल्कुल
0: हाँ, सही
1: कर
0: सही कह रहे,
1: रहे
0: गड़बड़ कर रहे।
1: हैं।
0: चलो ठीक है, शंकर भगवान से कहिए के भाई गड़बड़ नहीं करो, कैसे मैनेज है जनता,
1: हाँ, सही है
0: है कि नहीं?
1: सही है।
0: चलो बढ़िया है, आपने फोन लगा लो, बहुत अच्छो करो और हमें अच्छो लगो, आपसे फोन लगाओ आपने।
1: हाँ, और ये VFs पर और प्रसार भारती पर आपका प्रसारण नहीं आ रहा है, तो
0: जी
1: इनको इस तरफ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि हम तो VF और प्रसार भारती पर सुनते हैं, लेकिन ये एप्स पर मौजूद नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: चलो ठीक है। अभी आप सुन रहे हैं? अभी आप अपन?
1: अभी मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि VFs पर है नहीं,
0: अच्छा, उस पे नहीं आ रहा?
1: नहीं आ रहा। और मेरे को तो पता है कि सब प्रसारण होगा सोम और रवि और बुधवार को, तो इसी वक्त मैं सुन रहा हूँ।
0: चलो ठीक है, अपन गीत की ओर चलते हैं, अब गीत सुनते हैं।
1: ठीक है जी।
0: ठीक।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: है झुमका सिटी, बरेली से, उत्तर प्रदेश।
0: ओहो, को बोल रहा है
1: राजेंद्र गंगवार जी।
0: जी? राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: सब ठीक है सर जी, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल बढ़िया बढ़िया।
1: और क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है?
0: मौसम बादल छाए हुए हैं,
1: बारिश ना हो रही है? बारिश
0: बारिश तो नहीं हो रही अभी, हैं?
1: यहाँ भी नहीं हो रही है सर जी,
0: अच्छा,
1: बारिश यहाँ भी नहीं हो रही है, फिलहाल बादल है। हाँ जी,
0: ओहो, तो झुमका नहीं गिरा आपका बरेली के बाजार में?
1: झुमका नहीं गिरा,
0: नहीं गिरा?
1: टंगा हुआ है झुमका।
0: क्या बात कही।
1: हाँ
0: हमें तो लग रहा था झुमका गिर गया होगा,
1: नहीं
0: नहीं गिरा।
1: नहीं
0: और का हो रहा अपनू?
1: जी, कुछ नहीं सर जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं लेते लेते, चोरी
0: हाँ चलो, बढ़िया है।
1: चोरी।
0: हाँ सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ जी,
0: तो कौन सा गीत सुनिए अपन?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा कर्मा। गाने
0: हाँ
1: के बोल है, आए मोहब्बत तेरी दास्तान।
0: ए मोहब्बत तेरी दास्तान।
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: या ये नहीं मिले तो ये सुनवा दीजिए, मैंने
0: हाँ
1: रब से तुझे मांग लिया।
0: मैंने रब से तुझे मांग लिया
1: हाँ यही सुना
0: है?
1: दीजिएगा, हाँ यही सुनाइएगा।
0: बिल्कुल।
1: मैंने रब से तुझे मांग लिया।
0: हाँ
1: हाँ जी, हाँ
0: चलो, अच्छी बात है। अब जब झुमका नहीं गिरा तो रब से तो मांगना ही पड़े फिर। हाँ सही बात है।
1: जी,
0: चलो ठीक है, चलें गीत की ओर। क्या और कुछ बात करनी?
1: हाँ जी सर जी, और कुछ हमारे दोस्तों के नाम भी शामिल करेंगे सर
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ
0: स्वागत है
1: जी,
0: आपका।
1: हमारे राजू यादव जी हैं,
0: हाँ
1: गंगाधर सावंकर जी हैं, बाहुबली जी हैं, सोनू भाई जी हैं, और सुनील झा जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं,
0: जी
1: और सारुन नूर अंसारी जी हैं, और आरजे पूनम जी हैं कानपुर से, और जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा सर जी, साथ में आपको भी। ठीक
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी है। चलो सुनते हैं गीत।
1: है सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: दीदी, नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से?
1: मैं कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र सर।
2: जी कौन बोल रहे?
1: मैं गंगाधर सावनकर।
2: गंगाधर सावनकर?
1: जी जी सर।
2: जी कैसे हैं भैया आप?
1: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर?
2: बिल्कुल बढ़िया हैं, आप सब जन की कृपा है।
1: भरो ऊपर भगवान की कृपा है सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहाँ हो अपनो?
1: अभी तो चल रहा है सर, 19-20 को अपने श्रोता मिला हुआ चल रहा है। कुछ भिलाई में है।
2: अच्छा, हाँ।
1: कुछ महाराष्ट्र के संभाजीनगर में है।
2: अच्छा, हाँ।
1: पूरे लोग भिलाई जा रहे हैं, कुछ संभाजीनगर जा रहे हैं।
2: अच्छा,
1: तो मैं कुछ नौकरी के कारण से मैं जा रहा नहीं सर।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बढ़िया है।
1: हाँ हाँ, छुट्टी एक दिन मिलती, मगर वो भिलाई जाने को 4 दिन लगता।
2: अच्छा,
1: हमारे महाराष्ट्र में जाने को 2 दिन लगता है, स्वास्थ्य में जा रहा है सर।
2: चलो बढ़िया है, बढ़िया है, जाओ।
1: मैं जा रहे नहीं सर, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ।
2: बिल्कुल,
1: आपके बुंदेलखंड रेडियो दे रहे से।
2: जी जी जी,
1: जे भी सफर में है
2: जी, बिल्कुल
1: उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ सर मैं।
2: जी जी। गीत कौन सा सुनाएंगे अपन आज?
1: अभी सर लाइव में गए या ऑनलाइन सर?
2: लाइव में है आप?
1: अच्छा अच्छा
2: जी जी।
1: गीत सर देखो, अभी लिखे सर, जमीन आसमान
2: का।
1: हाँ,
2: गीत के
1: लता मंगेशकर ने गाया था सर
2: जी।
1: ऐसा समा नहीं होता।
2: अच्छा, ऐसा समा नहीं होता।
1: हाँ, ये गाना सुना है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ और सर, क्या आपके हाल? बुंदेलखंड में बारिश हो रही?
2: बारिश तो अभी खैर नहीं हो रही। और बादल जरूर छाए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: बादल
1: हमारे पास रोज रात में आ रही सर बारिश।
2: अच्छा,
1: हाँ, और दिन में धूप गिर रहा है।
2: दिन में धूप और रात में बारिश।
1: हाँ, बारिश हो रहा है।
2: चलो,
1: इधर
2: अच्छा।
1: काम भी हो रहा है, इधर पानी का, लोगों को पानी का भी राहत मिल रही है।
2: सही बात है, काम का काम चल रहा है और पानी भी हो रहा है।
1: पानी में, हाँ।
2: चलो बढ़िया।
1: मगर सर जितना है कि डैम वगैरह हमारे पास भरा नहीं, अभी तालाब भरा नहीं।
2: अच्छा, आपके यहाँ के आगे तालाब नहीं भरे?
1: हाँ नहीं भरे सर, बड़ा पानी जरूरी है। और आगे के पशु पक्षियों को, प्राणियों को पानी जरूरी सर।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ
2: सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ, इसलिए लोग एक दो पौधे तो लगाना सर।
2: बिल्कुल जरूर जरूर।
1: हाँ, उससे आगे के लिए अच्छा रहेगा।
2: सही बात है,
1: आगे के जीवन सफल होने के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सही टाइम पे बारिश होगी।
2: हाँ,
1: इसलिए हर आदमी 2 पौधे लगाना सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल जरूर।
1: हाँ, हम लगा चुके सर।
2: हाँ, कितने पौधे लगा दिए आपने?
1: अभी मैं 4-5 पौधे लगाए सर मैं।
2: चलो बहुत अच्छी बात है।
1: और
2: 4-5 सभी लोग लगाएं तो बहुत पौधे लग जाएं।
1: हाँ सर,
2: वो जरूरी भी है।
1: हाँ हो,
2: चलो ठीक है, तो अपन गीत की ओर चलते हैं।
1: कुछ मित्रों का नाम लेता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
1: हाँ, हमारे तुकाराम जादव जी है
2: जी,
1: राजेंद्र गंगवार जी, भगवान सिंह जी, सूरज जादव पटंगे है
2: जी,
1: और सुनील झा है, और राजेंद्र हमने केसरी सिंह राजपूत है
2: जी जी जी,
1: सभी छह सर।
2: चलो बहुत अच्छी बात है,
1: धन्यवाद सर।
2: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: यूपी झांसी बुंदेलखंड ग्राम अठौंदना से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहा हूँ सर।
0: जी प्रीतम भैया, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है सर। अब तो बादल छाए हैं 2-3 दिन से। पहले 2-3 दिन पहले अच्छी बारिश हो गई।
0: हाँ, अब दो तीन दिन
1: हाँ
0: से नहीं भाई, फिर
1: फिर नहीं भाई।
0: चलो देखो आप क्या होता है आगे।
1: जी आगे हम जी गाना सुनना चाहते हैं। वो
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सावन का महीना चल रहा है, तो गाना है सावन आया बादल छाए। हाँ,
0: अच्छा
1: और सर डेडिकेट कर दें।
0: हाँ
1: जी सर, सबसे पहले आपको
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, फिर सभी श्रोताओं के लिए, बुंदेलखंड के और पूरी बुंदेलखंड की टीम के लिए सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आपने देखो वक्त निकाल के और फोन लगा भी खिलाने में बहुत बहुत खुशी हुई।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार है,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। चलो गीत सुनते हैं।

0: रे शोर।
1: अरे
0: बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फतेह वीर अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में और आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम को अब तक संपन्न होवे को समय होगा है, सो अपने दोस्त माता दिन भैया को ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति और चलत चलत अपन सुन बढ़िया बढ़िया से गीतन को लोग गीतन को आनंद। नमस्कार।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योग विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव, अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है।
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है,
0: बिल्कुल
1: केवल
0: बिल्कुल
1: उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, किस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है, किस
0: जी
1: चीज की उपलब्धता वहां पर है,
0: जी
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्र में कर पाएंगे। तो
0: जी
1: उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के
0: जी
1: विकास के लिए।
0: जी
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य शासन की भी योजना है, केंद्र
0: जी
1: शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते हैं?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं।
0: जी
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं।
0: जी
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है, उसके
0: जी
1: लिए सतर्क रहना है।
0: जी
1: तो फलस्वरूप तो एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी
1: पॉलिथिन
0: जी
1: का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुवन वुवन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ, फ्लाइट ब्रिक्स हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्ते, इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर्स ब्लॉक वगैरह या फिर फ्लाइट ब्रिक्स की काफी संभावनाएं इस क्षेत्र में है।
0: और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना। हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना दे के उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया करा।
0: सर, कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है,
0: ट्रेड के ऊपर।
1: जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, किसी 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, या किसी का 5 दिन का भी रहता है। तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
0: सर,
1: जाएगी।
0: प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है, तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट ये हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो साइंटिफिक प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया लिया गया है, तो
0: जी
1: मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
0: जी अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है।
0: जी
1: सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी।
0: जी
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
0: जी
1: युवा उद्यमी योजना
0: जी
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है।
0: जी
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है।
0: जी जी जी
1: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है,
0: जी जी
1: व्यवसाय शामिल नहीं है।
0: जी
1: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: सृजन कार्यक्रम
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए, खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे

युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसायी बन सकता है हमारा युवा साथी, तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हर प्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या आप एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम कर सकें। तो उसका ये कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम

शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उप निरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछतीगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर।

0: से जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
0: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा, और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और

0: हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: का रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020

0: को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी है। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरसेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन के

एपिसोड 10 दृश्य स्वच्छता स्वच्छ आंखें स्वच्छ जीवन। इस एपिसोड का उद्देश्य गांव में सफाई के महत्व को समझना है, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है गांव में साफ सफाई, पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त गांव, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति BWSC की भूमिका, सामुदायिक निगरानी और देखरेख, कचरा और प्लास्टिक का सही प्रबंधन, सरकारी समर्थन और सामुदायिक भागीदारी, पहले और बाद में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर भी जरूरी है, हाँ या नहीं। सवाल नंबर 2, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं। सवाल नंबर 3, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं।

0: नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और मेरे साथ है जोश से भरपूर मेरे सहहोस्ट आरजे
1: माता दिन।
0: दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है। हम सिर्फ उस सफाई की बात नहीं कर रहे जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि उस हवा की भी जिसे हम रोज सांस लेते हैं और उस माहौल की जो हमारी जिंदगी का सीधा प्रभावित करता है। और हाँ, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: बढ़िया, चलो सुनाओ।
0: मेरे दोस्त की मेघालय यात्रा कमाल की रही। वो एक छोटे गांव की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं तो बस देखते ही रह गई। फिर मैंने खुद इंटरनेट पर खोजबीन की और सच में वो बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा था।
1: तुम तो सस्पेंस बढ़ा रही हो, अब ज्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो। जल्दी बताओ कि आखिर ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या खास है।
0: अच्छा सुनो, इस गांव का नाम मावलिन नोंग्स है। ये मेघालय में है और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ सफाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की आदत में शामिल है। ये गांव पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कहीं से प्लास्टिक आ भी जाए तो उसे फेंका नहीं जाता। लोग प्लास्टिक की पुरानी बोतल या टायर से गमला बनाकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। गांव की गलियों में आपको बांस से बने डस्टबिन दिखेंगे। यहाँ स्थानीय चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इस गांव की सबसे मजेदार बात है कि यहाँ सभी आदमी और बच्चे रोज अपने आसपास की सफाई करते हैं। टेसल की झाड़ू से बच्चे सड़कें साफ करते हैं। ये झाड़ू पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। इस प्रकार सफाई का काम सब मिलकर करते हैं।

0: लोगों के घर और बाकी इमारतें भी खास हैं। ज्यादातर बांस और पत्थर से बने हैं। इससे गांव खूबसूरत लगते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ सभी घरों में शौचालय है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। मावलिन नोंग्स ने साबित कर दिया है कि जब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं, तो दूर दराज के गांव भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
1: लगता है तुम इस गांव की बात करना छोड़ नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। गांव की दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी वहां जाने का मन कर रहा है। जो कुछ भी तुमने बताया वो असल में उसी साफ सफाई की बात है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और यही तो आज के लिए एपिसोड का मुद्दा भी है।
0: दोस्तों, दिखने वाली सफाई का मतलब केवल अपने घरों को साफ रखना नहीं है, बल्कि पूरे गांव को साफ रखना है। जैसे बाजार, बस स्टॉप, गलियां, स्कूल, हेल्थ सेंटर, तालाब, कुआं, ये सब कूड़े कचरे और गंदे पानी से दूर रहें और अच्छी हालत में रखे जाएं।
1: बिल्कुल, गंदगी भरा माहौल सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि ये मक्खियों और मच्छरों को बुलाकर बीमारियां फैलाता है। गंदगी हमारे पानी को गंदा करता है, वह हवा को खराब करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और खाने की सफाई को भी प्रभावित करता है।
0: सोचिए, क्या आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा लगेगा जिसके चारों ओर प्लास्टिक और कचरा फैला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो जगह साफ सुथरी और हरी भरी हो तो वहाँ बैठना सुकून भरा लगेगा। साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं, बल्कि ये हमारे सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है।
1: सोचिए, अगर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च या पंचायत घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हो तो क्या वहां जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत सरकार गांव को ODI प्लस लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ खुले में शौच रोकना नहीं, बल्कि कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी को साफ करना और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखना भी है।
0: और हाँ, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए गांव को सभी घरों में शौचालय का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कम से कम 80% घरों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना सिर्फ उनके आसपास का इलाका, बल्कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र और तालाबों के आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा ना हो। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ODF प्लस IEC मैनुअल के अनुसार
1: हर गांव की सफाई और प्रगति को जानने के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि गांव में कितना सुधार हुआ है। ये स्टार टियर प्रणाली के जरिए होता है। सबसे पहले आकांक्षी गांव की बात करते हैं। ये ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव है, जो कचरे या गंदे पानी के प्रबंधन की शुरुआत कर चुके हैं। फिर आते हैं उभरते गांव, जहां ठोस और तरल दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। और आखिर में आदर्श गांव वे हैं जो ODF प्लस के सभी नियमों को पूरा करते हैं। यहाँ नियमित सफाई होती है और गांव वाले सफाई और जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहते हैं।
0: वैसे ODF प्लस मॉडल गांव बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम सभी घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना है, ताकि कोई भी खुले में शौच ना करे। मतलब साफ सफाई ऐसी हो जो आंखों से दिखे, यानी घरों, स्कूलों या सड़कों पर कूड़ा या गंदा पानी नजर ना आए। गांव में सभी घरों से कचरा इकट्ठा होना चाहिए। जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। नहीं गलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। गंदे पानी को साफ करना जरूरी है, इसके लिए नालियां ठीक करनी होंगी।

0: पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने होंगे और साफ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी करना होगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। जब गांव वाले मिलकर काम करते हैं तो उनका गांव ODF प्लस मॉडल बनकर पूरे देश के लिए अच्छा उदाहरण बनता है।
1: गांव में सफाई और पानी से जुड़ी अच्छी आदतें लगातार बनी रहें, इसलिए मजबूत ग्राम जल और स्वच्छता समिति या VWSC का होना बहुत जरूरी है।
0: गांव में VWSC यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति बहुत जरूरी है। ये कोई बाहर की नहीं, आपके गांव की समिति है। इसमें आपके गांव के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि सफाई और बदलाव लाने की जिम्मेदारी और ताकत आपके गांव में है। VWSC समिति का काम गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें हर घर की भूमिका होती है। जब इस समिति के साथ मिलकर सभी लोग काम करते हैं तो एक साफ और सेहतमंद गांव बनना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि VWSC में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति के 5 सदस्य महिला प्रतिनिधि, आशा बहन और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी होते हैं।
0: हाँ, और आप जानते हैं कि आपके गांव को साफ और सेहतमंद बनाए रखने में VWSC का अहम रोल होता है। मैं आपको इस समिति के काम के बारे में बताती हूँ। ये समिति गांव के लोगों को सफाई से जोड़ने की योजना बनाकर इसे हकीकत में बदलती है। साथ ही समिति ये ध्यान रखती है कि गांव में सफाई से जुड़े काम जिले की बड़ी योजना से मेल खाएं और गांव को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। VWSC सफाई के लिए मिलने वाले फंड को सही तरीके से खर्च करती है। पैसे का उपयोग खाद बनाने के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे और कचरा निपटाने के आसान तरीके तैयार करने में किया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। VWSC सिर्फ सफाई से जुड़ा ढांचा बनाने का काम नहीं करती, बल्कि पूरे गांव को जागरूक भी करती है। ये समिति खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सफाई और कचरा प्रबंधन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में सबको बुलाया जाता है ताकि हर कोई ये समझ सके कि साफ सफाई सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
0: तो दोस्तों, अपने VWSC का समर्थन कीजिए। ये सच में लोगों के लिए बनी समिति है।
1: क्या तुम जानते हो कि सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव गांव में सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी है?
0: रुको, सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव से तुम्हारा क्या मतलब है?
1: मैं समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि गांव के लोग खुद सफाई की जिम्मेदारी लें। गांव के लोग निगरानी समितियां बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि शौचालयों का सही इस्तेमाल हो, कचरा ठीक से फेंका जाए और सार्वजनिक स्थान साफ रहें।
0: अब संचालन और रखरखाव के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि सफाई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे शौचालय, पानी सोखने वाले गड्ढे, खाद के गड्ढे और बायोगैस इकाइयां ठीक से चलती रहें और समय समय पर उसकी मरम्मत हो। VWSC इस काम में खास भूमिका निभाती है। ये समिति मरम्मत का इंतजाम, गड्ढे खाली करने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे।
1: अब समझ में आया कि गांव के लोग खुद सफाई पर नजर रखते हैं। साथ ही VWSC की मदद से सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही। जब लोग सफाई की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल होते हैं तो वे इसे चलाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कई गांव में लोग बारी बारी से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं और जल निकासी दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव में बड़ा बदलाव आता है।
1: हाँ, लोगों को सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमा हुआ पानी को हटाना जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपें। खास तौर पर घर के बाहर और पुराने टायरों में पानी जमा ना हो, क्योंकि वहां मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। नहाने या कपड़े धोने से निकला पानी भी खुली नालियों में जाने की जगह सूखने वाले गड्ढों में जाना चाहिए ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें।
0: गांव में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार, चाय की दुकान और मंदिर में रंग कोडेड कचरा पेटियां रखनी चाहिए। हरे रंग की डस्टबिन में गलने वाला कचरा जैसे सब्जियों का छिलका डाला जाए। नीली डस्टबिन में सूखा और ना गलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक और कागज रखा जाए। इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा।
1: लोग खुद आगे आकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं। लोग दीवारों पर अपना इलाका साफ रखें जैसे संदेश लिख सकते हैं। लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले या कूड़ा साफ करने वाले से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि अलग अलग किया गया कचरा, खासकर प्लास्टिक, सही तरीके से हटाया जाए और खुले में जमा ना हो।
0: दोस्तों, याद है हमने एपिसोड 6 में ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में क्या सीखा था? जल्दी से याद कीजिए। रसोई का कचरा और गाय का गोबर बेकार नहीं होता, इन्हें खाद में बदला जा सकता है जो खेतों और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल, अगर आपके घर या खेत के पास थोड़ी सी खाली जगह है तो आप वहां एक छोटा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें रोजाना का गीला कचरा डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, खराब फल या गोबर। इसे कभी कभी हिलाएं और मिट्टी से ढककर रखें। धीरे धीरे ये बेहतरीन खाद बन जाएगी जो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कूड़ा भी कम होगा और गांव की सफाई बनी रहेगी।
0: बस ध्यान रखिए कि खाद का गड्ढा घरों और पानी के स्रोतों से दूर होना चाहिए। गाय का गोबर खाद या बायोगैस बनाने में काम आ सकता है, जिसे खेती बेहतर होती है, सेहत सुधरती है और हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। तो चलिए स्वच्छता और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करें।
1: हाँ बिल्कुल, जब लोग खुद सफाई की पहल करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है।
0: सफाई सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारा इलाका साफ और सुंदर बना रहेगा।
1: आपका गांव मिलकर ये कर सकता है। स्कूली बच्चों, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए इकट्ठा करें। हर महीने एक दिन सफाई अभियान चलाएं। चाय की दुकानों, मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान रखें। लोगों को रसोई और गोबर के कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाएं। इससे कचरा कम होगा और खेतों की पैदावार बेहतर होगी। आंगनवाड़ी या स्कूल के पास एक छोटा सा सामुदायिक बाग बनवाएं।
0: श्रोताओं, सफाई सिर्फ सरकार या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम घर पर कैसे सफाई रखते हैं, कचरे का सही निपटान कैसे करते हैं और अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हमारा गांव साफ और सुंदर बनता है। चलिए मिलकर पहल करें और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।
1: दूसरों का इंतजार किए बिना खुद सफाई की पहल करें। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सफाई को शामिल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी सेहत का रखते हैं।
0: याद रखिए कि स्वस्थ गांव ही खुशहाल गांव होता है और स्वच्छ गांव ही सबसे मजबूत गांव होता है।
1: आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने गांव को साफ रखें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी से जाने का होता है। समय श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे नंबर पे फोन करके, हमारा नंबर है 92 19 20 77 49। अब हमारे सवालों की बारी है जो आपसे पूछने हैं, जो कि हमने पहले भी पूछे हुए थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो पहला सवाल है, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर की भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा है, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए।

0: हाँ या नहीं। सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसे जगहें भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 9219207749। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और अपने रेडियो साथी माता दिन भैया को दो
0: जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे हुई हैं, खुशहाल हुई हैं। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज़्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथी

0: ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है। तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जरूरत हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो। और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख देखों और सुन देखों मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहेगा और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा होगा और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहेंगे काफ़ी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकता है वो। तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जासे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनों का कथ है वो, मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे हैं वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई किलाने फसलन को निगरानी करत रहे। साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मेनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों आवे बारे 3 से 4 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे। साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई यदि दिखें तो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवें। बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। इको नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 EC 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो। इके नियंत्रण हेतु क्लोनाफॉस 25 EC दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है वो।

0: साथियों, ईके लाने बचाव हेतु आपको मेटालैग्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज़्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4 से 5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों, आप सब जने सुन रहे थे जानकारी, मौसम आधारित जानकारी, और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना, और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, वेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को

तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना, ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे के फूल की खेती मुनाफा कारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे, बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है, और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम एक 60 दिन 2 महीने का पीरियड गिनते हैं, कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेगा, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं, दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किसान भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा, और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस। तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूं। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है,

43,560 लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए। मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया वो वाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा, मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़, यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप 1 एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में, तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास डाल दो, मजबूती के लिए पोटास भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो, कि जब आप डाली फूटन की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो, कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटन का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-52-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले DAP डाल दो, आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो, तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7,000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4,000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1,000 भी टन 30-40 रुपये किलो चला गया, तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50 से 60 हजार प्रति एकड़ 2 से 3

महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी लीफ की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियां ज्यादा है, तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने, और देसी वाला गलगोटा कर देना है, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन, 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो, कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्सुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2 वेराइटी पसंद करनी है और 3 या 4 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये भी किलो बेचा था और 120 रुपये भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हजार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बगैर ऐसा करें कि आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान है, जो ऐसा लगाते हैं 2-2-3 प्लांट लगाते हैं 2 साइड में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोल लाइन में, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा,
तो आपको मॉनसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो। लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यवसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन

आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मुरो सुनो डरो लिलार के बेंदा लेदे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत है अगले साथियों की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग गए लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को आनंद लाओ है। ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

0: हर छमा छम नाचे लांगुरिया मोदी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाय भाई लांगुरिया।